desham. This is so jab plan. When that time comes to go out, you ask Govind that Bhagwan, remain at the tip of my tongue. If you're not there, at least in my mind, remain so that I will be able to come to you. So this is sansar ki bhai nash hai. भक्ति के बुद्धि करने कृष्ण चंद्र आनंद दाग संतोष करा तुम्हारे सम्मुख वर्णन का आप लोग सवादन होकर सुनिए. नॉट लिसन ऑफ कोर्स टू सच ए वंडरफुल प्रे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. सबको बोलो श्रीमन्ना.

एक समय वन ओकेजन बद्र का आश्रम सनक सनंदन सनातन सनत कुमार शुद्ध चारोड़शी को सत्संग बोल लिए हैं. नारद जी वेंट एंड ही मेट इन बद्रिका आश्रम. बद्रिका आश्रम इज ऑन द हिमालयस, वेरी होली साइट फॉर भगवान विष्णु. बद्री ट्रीज, सो बद्री नारायण, यू नो समथिंग.

What's the next line? Jai Nandalala. Some singing Jai Nandalala and some singing all the song like them children and them who would be humming in school. So like this, he went Jab Vrindavan ko jahar mur कृष्ण मुरारी उनके अनेक प्रकार को अद्भुत लीला को हे मुनियो वह एक अलौकिक शहर देख नहीं आया हे वह भाव सुख ने वर्णन करता हूँ वह एक युवती स्रोत अनंत दुखे मन मारे बहते सोच करते रहे और अनेक समीप को दो वृद्ध मनुष्य आचित पड़ते लंबे लंबे श्वास रहते हैं वह श्री उनके शुशोको करते हैं और बारम्बार समझेते अनेक आगड़ो गढ़ते हैं यंग लेडी एंड On her lap, two old fellas, young person. She's young, but on her lap, aur lambe lambe ke shwas hote hain, and they are breathing us almost as if they can't, you know, they're having difficulty breathing, they're taking very deep breaths. And when this comes to him, unke apni dehi ki sarkara disha ko, aako paraspar ko dekh, she's looking around, right around, almost helplessly. Sahasro ki srium, पंक से करते बारंबार धैर्य को मुकुट सबचे है उनका दशा देखता शर को शोक कुल बालक को निकट हो गए हैं she have a set of girls around her that they are funny boys and she is asking व्याकुल होकर हो गए हैं so Narad witnesses this हे कृपा सिंधु कुछ काल मेरे सम पढ़ के मेरे कष्ट निवारण कीजिए आपके दर्शन संसार को जीवों को निसंदेह सब पाप हो करने वाले that oh holy sage It is by not by guess that I have come to meet with you. It is because of some blessing that I have met with you. That please do something to help me. Jai Nandalal.

0: प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। सीताराम, आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 to 6 PM वेयर वी स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण भगवान ऑन अवर प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
1: Parampara is our tradition. Parampara is our heritage. Parampara is about inspiring music as your day unfolds. Join Dave Ramsuchit on Tuesdays, Wednesdays and Thursdays, 5 to 7am for Parampara on Radio Jagriti 102.7 FM, A New Awakening.

0: प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। सीताराम, आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 to 6 PM वेयर वी स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण भगवान ऑन आवर प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
1: The Indian Caribbean Museum and Art Gallery of Trinidad and Tobago is located in Waterloo, Carapichaima. Founded by the Sanatan Dharma Mahasabha in May 2006, dedicated to preserving the history of East Indian indentureship and showcasing the rich cultural heritage of East Indians in the Caribbean. The museum houses an art gallery, a reference library, rare musical instruments, agricultural tools, cooking utensils, ancient photographs, and historical books. Come, visit the Indian Caribbean Museum located in Waterloo, Carapichaima. Opening days and hours, Wednesdays to Sundays at 10 a.m. to 4 p.m. For bookings, please call 270-8951, 782-5473 and 380-0572.

रामचंद्र की जय, श्री सरस्वती माता की जय, श्री रामायण माता की जय, श्री तुलसीदास महाराज की जय, श्री गुरु महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सदगुरु की दंड जय जय सीताराम। आप लोग कर बेटी सत्यम बटी ऑल ऑफ यू।

राम वहरे भाई. यू नो माउंटेन्स ऑफ लाइफ, माउंटेन्स आर मेनी रॉक्स एंड पेबल्स एंड डस्ट, रॉक्स एंड पेबल्स एंड डस्ट, बट फ्यू जेम्स लाइक योरसेल्फ. वो जेम्स भगवान श्री राम डिवोटीज. यू विल नॉट सेव एवरीबॉडी, एटलीस्ट शाइन इन योरसेल्फ.

0: वज्रदेन दानव दलन जय जय जय कपीसु।
1: सबको एक आवाज है, भगवान की नमन करता हूं। All of us in one voice.